आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, एंड ऑफ कोर्स द फीमेल पार्ट इज, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सामने है समधी जी गा रही समधन है. अ लास्ट सॉन्ग ऑफ द फर्स्ट आवर इज फ्रॉम मूवी मोहरा, विजू शाह's म्यूजिक, एंड इंदिवर रोड द लिरिक्स. दिस मूवी बाय द वे हैज सेवरल ट्रैक्स, द लिरिक्स एंड पिक्चराइजेशन आर समवॉट रिस्के एंड सजेस्टिव. फॉर एग्जाम्पल, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग बेस्ड ऑन द पॉपुलर कवाली दम मस्त कलंदर बाय नुसरत फतेह अली खान. एंड द सॉन्ग ऑन प्ले फॉर यू इज नॉट दैट वन, इट इज कुमार सानू अलका याग्निक ड्यूएट, दिल हर कोई देता है, हियर इज द सॉन्ग.